0: साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना, श्रवणन बिकल भय संग तेरे, इंद्री का बल थाका, चरण रहे कर ढरक परे है, मुख हो न निकसै बाता, थाके पंच दूत सब तस्कर, आप आपने भ्रमते, थाका मन कुंचर और थाका तेज सूत धार रमते, मृतक भय दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे, कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे।
1: ये पिछे पंक्ति आई सी, थाका मन कुंचर और थाका, ये पिछला जेड़ा पाठ है, थाका वखो वखरा उच्चारण करना पाठ शुद्ध किया गया सी, पर फिर भी विद्यार्थियों की ज्ञात हित बेनती है, पहला पाठ थाका इकट्ठा करना ते दूजा थाका वखरा पाठ करना।
0: आसा

राचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दुर्लभ पायो राम राय सो दुर्लभ पायो अस बड़भाग हमारा राम राय सो दुर्लभ पायो अस बड़भाग हमारा सोर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस ओजाना कह कबीर मोह ब्याहे चले है पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे सखी सहेली ननद गहेली देवर कै बिरह जरो रे मेरी मत बौरी मैं राम बिसार्यो किन बिद रहन रहो रे सिजे रमत नैन नहीं पेखाओ एहो दुख का सौ कहो रे रहाओ बाप सावका करे लड़ाई माया सद मतवारी बड़े भाई कै जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बाधया मैं राम रमत सुख पाया।

जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कह समुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म

गया परम सब छूटी सर्व भूत एक कर जानिया चूके बाद बेबादा कह कबीर मैं पूरा पाया भय राम प्रसादा आसा रोजा तरह मनावे अल्लाह सुवादत जीव संगा।

0: सोच विचार ना देखा खबर ना कर है दीन के बौरे ताते जन्म अलेखा रहाओ।
1: जिहड़ा पिछली पंक्ति आई है काजी ते थोड़ा जिहा रुकना है। काजी साहेब

नार पुरख नहीं कोई पढ़े गुणे नाही कछ बौरे जौ दिल मह खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीतर

0: जाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसर्यो ताना। धरन आकाश की करगह बनाई, चंद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तह तांती मन माना। जो लाहे कर अपना चीना, घाटे जो लाहे कर अपना चीना।
1: ये जेड़ा थले चिन्ह लग्या अंधा जी गया है, एदा उचारण चीने ही करना पाठ करवाया सानू। इथे की लिखा
2: पाठ दर्पण देख लो किसे पोथी दे विच नन्ने दे हेठां जइया लग्या है तुहाडे कोल सारियां कोल हलांती है ना सारियां कोल
0: जुलाहे कर अपना चीना, घट ही राम पछाना।
2: इथे ना भरम नहीं करना भी जाइए यार हलंत दा अर्थ कोई फर्क नहीं पिया है। हां जी अर्थ सेम ही रह रहा है जी।

हर सिमरत जान गए नैस तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम देओ दूध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया।

0: माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुतकारिया ओह कार सुनया हिरदे वस्या पार ब्रह्म भगता मह गनया ए बिद सुन कै जाटर उठ भगती लागा मिले प्रतख गोसाइया धन्ना वड़ भागा रे चित चेतस रे चित चेतस की ना दयार दमोदर बेबह ना जानस कोई।
1: ये पहला चेत से थोड़ा जा रुक जाना है। रे चेत चेतस की ना दयार दमोदर फिर अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है ते चाल भी सुंदर बन जाती है।
2: थोड़ी बेनती दास कर देवे गुरबाणी दे अंदर जिथे कके सिहारी ऊड़े नू औंकड़ नाल क्यों शब्द आया है अजकल असी क्यों दे अर्थ जड़े रूप विच करदे आ ना ए होर ने गुरबाणी विच क्यों दे अर्थ होर ने क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे उत्थे किमें अर्थ है गुरबाणी विच क्यों दा किमें करके मिला मैं अपने वाहिगुरु जी नू ते क्यों जिथे अर्थ रख आना हुंदा ना उत्थे कक्के नू विहारी नाल पातशाह ने लिखिया है ये जड़ी अपने जिला अंबाला जां उपरले इलाके घाट दे इलाके ने ना इत्थे जड़ी बोली बोली जांदी है वह अज भी तुसी पुराने बजुर्गों तो सुनोगे वह क्यों दी थां ते की शब्द वरतदे ने की। सो इसे तरह गुरबाणी दे विच कई थां ते चीज सानू मिलदी है कक्के नू विहारी दा अर्थ इत्थे क्यों है जिहड़ा अजकल आपां क्यों बोलदे हां इसे तरह पाठ जिवें कीता गया ध्यान नाल करन द्वारा कर दो जी।
0: रे चित चेतस की ना दयार दमोदर बिभे न जानस कोई जे धावहे ब्रह्मांड खंड कहो करता करे सो होई रहाओ जननी केरे उदर उदक महे पिंड किया दस दुआरा दे आहार अगन में राखे ऐसा खसम हमारा कुम्मी जल माहे तान तिस बाहर पंख खीर तिन नाही पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कहे तन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जी डराही आसा शेख फरीद जियो की बाणी।
3: उपर जेडे दो पाठ आए सी द्वारा ते अहार ये थोड़े ठीक नहीं सी बोले गए भाई साहब बड़ा शुद्ध पाठ करते ने संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरांवालियां दे विद्यार्थी ने पुराने पाठी ने पर कई बार उम्र के तकाजे नाल पूरा सह नहीं बनता जां आवाज बदल जाती इस करके उचारण उन्होंने ठीक ही किया पर कई बार सुनने विच भुलेखा पै जाता उम्र नाल सब कुछ आप जी नूं पता ही क्योंकि बदल जाता पर यह आप जी ने पोथी साहब ते जरूर ध्यान रखना द्वारा ते आहार यही पाठ है।
0: आसा श्री फरीद जियो की बाणी एक
3: नहीं, सेख श्री नहीं सेख।

0: देश कुमावन धन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवास सब त्यागे जम पुर ऊठ सिधास होए अनन मन हठ की दृढ़ता आपस पाओ जानात जो अनिंद निंद कर छोड़ो सोई फिर खात सहज सुपाए में भय कृपाला तिस जन की काटी फास कहो नानक गुरपुरा भेटिया परवान ग्रसत उदास
1: गिरारा मुक्ता जी ग्रस्त पाठ
0: कहो नानक गुरपुरा भेटिया परवान ग्रसत उदास
1: ग्रस्त पाठ करो
0: ग्रस्त परवान ग्रस्त उदास गुजरी मोहल्ला पंजवा नाम निधान
1: हां जी इथे रोक के बेनती कर दे ग्रस्त पाठ आया ना जेड़ा जे एही रारा गग्गे दे पैर चाउंदा फिर ग्रस्त पाठ सीगा ते हुण रारा मुक्ता पूरा बोलना है ते जिस तरह हुण दस्या गया ग्रस्त हां जी अगे चलो जी
0: गुजरी मोहल्ला पंजवा नाम निधान जेन जन जपियो तेन के बंधन काटे काम क्रोध माया बिख ममता एह ब्याद ते हाटे हर जस साध संग मिल गायो गुर प्रसाद भयो मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायो रहाओ जो किछ कियो सोई फल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सतर सब एक समाने जोग जुगत निसानी पूर्ण पूर रहो सर्व थाई आनन कत हो जाता काट काट अंतर सर्व निरंतर रंग रवियो रंग राता भय कृपाल दयाल गोपाला ता निरपय कै कर आया काल कलेश मिटे खन पीथर नानक सहज समाया गुजरी मोहल्ला पंजवा जिस मानुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिन पहो सागर तरिया गुर हर बिन को ना अमृता दुख काटाए प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस घटाए रहाओ माया कै सुरबंध सैन साक केत ही काम न आया हर का दास नीच कुल ऊंचा तिस संग मन बाछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ता मैं प्रसन्न न बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बसत अगोचर सूझी फिरत तुमरे द्वार आया है भंजन हार राया साध के चरण धूर जान बाशय सुख नानक एहो पाया
2: गुजरी महला पंजवा पंच पदा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कै वासा उहा छोड़ धरन मह आया चित्रसाल सुंदर बाग मंदर सांगना कछु हो जाया अवर सब मिथ्या लोभ लबी गुर पूरै दियो हर नामा जी काओ एहा वस्त फब्बी रहाओ इष्ट मीत बंधप सुत भाई संग बनता रच हसिया जब अंति अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर अनर्थ बिहाजी संपै सुन्ना रूपा दामा कर अनर्थ बिहाजी

मता सूरत अवर सियानप जान कौ कछु न आयो जह जह अवसर आयो बन्यो है जह जह अवसर आए बन्यो है तहा तहा हर त्यायो प्रभ को भगत वच्छल बिरदायो करे प्रतपाल बारिक की न्यायी जान कौ लाड लडायो रहाओ जाप तप संजम कर्म धर्म हर की

वाह करती रसना शब्द सुहाई पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई वडभागिया वाह वाह मोह कढाई वाह वाह करह सही जन सोहने तिन कौ परजा पूजन आई वाह वाह कर्म प्राप्त हुवे नानक दर सचै शोभा पाई पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ भीतर कूड़ कुसत अभिमानी भरम भूले नदर न आवनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय कितै न लभनी कर भेख थके भेखवानी गुर सबदी खोलाईयन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते त्रिपतानी सलोक महला तीजा वाह वाह करत्या रैन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए वाह वाह करत्या हर

0: क्यों चल है मार्ग पंथा, हम अंधले को गुरियन चल दीजा, चन नानक को चल है मिलनता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की
1: सतनाम। श्री वाहिगुरु जी। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्तकाया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरुदयाल है, पै दुख विनाशन है, भगत वचल अनाथ नाथे शरण, नानक पुरख अच्युत है, कोर दुख्यन अनक हत्यन जन्म दारिद्रन महाभिख्यादन मिटंत सगल समरंत, हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पस्म क्रोत, सूरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे चौकी चौह गिरद हमारे, राम नाम मन लागा जम लज जाए कर पागा, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाओ, नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न बिरथी जासी, अनद करहे तेरे दासा जब पूरन होई आसा, बिलावल महला पंजवा, ताती वाऊ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौ गिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सदगुर पूरा पहिटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया एकाल मिलाई रहाओ, राख लिए तन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहु नानक कृपा पही प्रभ पहे सहाय सलोक, जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू नह छुटे निकट न जाय हो दूत, सलोक महला पंजवा, मन मह चितवो चितवनी उदम करोठ नीत, हर कीर्तन का आहरो हर देहु नानक के मीत, सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, इक ओवंकार सदगुर प्रसाद, जय कर की रताख्या करते का हुए बिचारो, तितकर गावहु सोहिला सिमरहु सृजनहारो, तुम गावहु मेरे निर्भो का सोहिला, हो वारी जित सोहिला सदा सुखोय रहाओ, नित नित जियड़े समालियन देखे गा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहु सजन असीसणिया ज्यो होवे साहेब स्यो मेल, कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से देहे आवन, राग असा महला पहला, छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेसनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वाई तोय रहाओ, विश्वे चस्या कन्या पहला थित्ती वारी माहो होवा, सूरज एको रुतनेक, नानक करते के केते वे सराग तनासरी महला पहला, गगन मैथाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, धूप मनानुलो पवन चमरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना तिरी आरती, अनहता सबदवा जंत पेरी रहाओ, सहस्तम नयन नन नयन है तोहे को सहस मूरत नन एक तो ही,

साकत हर रस साधना जान्या तन अंतर हो मैं खंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुभ दुख पाव है जमकाल सह हे सृजंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राखो राख वरवटा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटे दिन सरै नारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसहे जगाए पी आवे एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सुई बिहा जहो हर गुरते मन बसेरा निज कर महल पावो सुख सहज।

पाति साह, सुनिया अंधे पावह राहु, सुनिया हाथ हुवै असगाहु। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। मन्ने की गात कही ना जाए, जे को कहै पिछै पछुताए। कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ना है सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ना है सगल भवन की सुध। मन्ना है मुहे चोटा ना खाए, मन्ना है जाम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ना है मार्ग ठाक ना पाए, मन्ना है पथ से ऊपर गट जाए। मन्ना है मग ना चलै पंथ, मन्ना है धर्म से तीसन बंद। ऐसा नाम निरंजन होए।

ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव है दरगह मान पंचे सो

सुमार ताओल धर्म दया का पूत संतोख था परखया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबलै उपर किता भार धरती होर परै होर होर तिस्ते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन पूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लेवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ माल पख खाहे असंख निंदक सिर करहै भार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहै सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव पुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत।

पलीते कपड़ होए, दे साबून लइया ओह धोए भरिय मत, पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग।

ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵਹਿ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ ਏ ਤੋ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਇੱਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੇ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾ ਕੀਆ ਗੱਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਾਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
जाप श्री मुख वाक पात साही दसवी छपै छंद त्वै प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जाय कोट इंदर इंदरान साहे साहान गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वै सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एकाय नमस्तंग अनेकाय नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग परपोगे नमस्तंग सोजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तंग अपेवाय नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अबरने नमस्तंग अमरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वै प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अबरण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंद हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं
पुजंग पर्यात छंद नमो सर्ब माने समस्ते निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्ब पाले नमो सर्ब गाउने नमो सर्ब पाउने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकंग बिना निकलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं पुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रेसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा होए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हुन जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जान ही जेह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई कह जेब
तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बेहीन चक्कर बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब बिसव रचयो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग नारंग जाकह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही बहुचित मद पार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु

අනපූත අංග අබ අපංග ගාතමෙත අපාර ගුණ ගණ උදාර මොන ගණ පරණාම නිර්පෑන කාම අත දොත පරචාණ්ඩ මෙත ගත අකණ්ඩ ආලිත්සය කර්ම ආදෘශ්‍යය තර්ම සර්බාපාර නඩය ආන දණ්ඩ බඩය චාචරි ශන්ද තවය ප්‍රසාද ගොබින්දේ මොකන්දේ උදාරේ අපාරේ හරියං කරියං නිර්නාමේ අකාමේ පුජංග පරයාත ශන්ද චත්තර චක්කර කර්තා චත්තර චක්කර හර්තා චත්තර චක්කර දානේ චත්තර චක්කර ජානේ චත්තර චක්කර වර්තී චත්තර චක්කර පර්තී චත්තර චක්කර පාලේ චත්තර චක්කර කාලේ චත්තර චක්කර පාසේ චත්තර චක්කර වාසේ චත්තර චක්කර මානයය චත්තර චක්කර දානයය චාචරි ඡන්ද නා සතරය නා මිතරය නා පරමං නා පිතරය නා කර්මං නා කායේ අජන්මං අජායේ නා චිත්තරය නා මිතරය පරේ හය පවිතරය ප්‍රතිසය අදිසය අදෘසය අකෘසය ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥਤੇ ਕੇ ਆ ਛਿਜ ਦੇਸੈ ਕੇ ਆ ਭਿਜ ਭੇਸੈ ਕੇ ਆ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕੇ ਆ ਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕੇ ਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕੇ ਆ ਦਿੱਤ ਸੋਕੈ ਕੇ ਅਵਧੂਤ ਬਰਨੈ ਕੇ ਬਿਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕੇ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕੇ ਧਰਮੰ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕੇ ਆ ਸੋਕ ਬਰਨੈ ਕੇ ਸਰਬਾ ਅਪਰਨੈ ਕੇ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕੇ ਛਤਰੰ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪੈ ਕੇ ਅਨੁਭਉ ਅਨੂਪੈ ਕੇ ਆਦਿ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕੇ ਆਪਿ ਅਭੇਵ ਹੈ ਕੇ ਚਿਤਰੰ ਬਿਹੀਨੈ ਕੇ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰਜਾਕੈ ਰਹੀਮੈ ਰਿਹਾਕੈ ਕੇ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ ਕੇ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕੇ ਅਫਵੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹ ਹੈ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕੇ ਰੋਜੀ ਦੇਹਾਂਦ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕੇ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਗਾਉਣੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਉਣੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਜਾਹੋ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਹੋ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸੋਖੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪੋਖੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਤਰਾਣੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ ਕੇ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ ਕੇ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕੇ ਹੁਸਨ ਉਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮ ਉਲ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ ਉਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀਮ ਉਲ ਸਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬ ਉਲ ਪਰਸਤੈ ਬਿਲੰਦ ਉਲ ਮਕਾਨੈ ਜਮੀਨ ਉਲ ਜਮਾਨੈ ਤਮੀਜ ਉਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜੂ ਅਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀਫ ਉਲ ਅਜੀਮੈ ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕ ਉਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜ ਉਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮ ਉਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਬਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੋ ਜੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓ ਅੰਗ ਆਦਿ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਧੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ਸੋ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੈ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਛਿਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕਿਨਰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ
विभुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुकत सदा है, विभुगत प्रभा है, अनुकत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, चाचरी छांद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अदूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं तराणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्वय प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्राय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज कर हिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फेकन है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय कर हीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बेहेस्तुल निवास है के सर्बुल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मद भार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकै सदाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंज गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है
मन मानिया है, जग जानिया है, सरबं भर है, सरबं कर है, सर्ब पासिया है, सर्बनासिया है, करुणाकर है, विश्वं भर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खल खंडस है, पर ते पर है, करुणाकर है, अजपा जाप है, अथपा थाप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, धरणी तृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है, नर नायक है, खल कायक है, विश्वं भर है, करुणालय है, निरप नायक है, सर्ब पायक है, भव भंजन है, अर गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कार है, हर्ता हार है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बास है, जस के जस है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग विभूते कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद, अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश, अगंज अपंज, अलख अपख, अकाल दयाल, अलेख अपेख, अनाम अकाम, अगाह अटाह, अनाथे परमाथे, अजोनी अमोनी, ना रागे ना रंगे, ना रूपे ना रेखे, अकर्मं अपरमं, अगंजे अलेखे, पुजंग पर्यात छंद, नमस्तुल परनामे, समस्तुल परनासे, अगंजुल अनामे, समस्तुल निवासे, निरकामं बेपूते, समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं परनासी, सुतर्मं बेपूते, सदा सचदानंद, सतरंग परनासी, क्रीमुल कुनिंदा, समस्तुल निवासी, अजायब बेपूते, गजायब गनीमे, हरियं करियं, क्रीमुल रहीमे, चतर चक्रवर्ती, चतर चक्र पुगते, स्वयं भव सुबं, सर्वदा सर्वजुगते।

मारिया है चुन चुन सत्तर हमारे मारिया है। आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हु जो सदा हमारे पच्छा हु जो सदा हमारे पच्छा। श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा। सकल काल का किया तमासा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर

पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना है, घट घट के पट पट की जाना है। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निरिबकार निरलंभ, आदि अनिल अनाद असंभ।

राजा प्रथम संसार एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहि पूपा अंडज जेरज सेतज किनी उत भुज खान बहुर रच दिनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा।

करो, सिखय उबार असिखय संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रान काता, जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल पो एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहारि हो, ताके ताप तनक मह हारि हो, रिद सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छाह छुवै।

जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन शुभ राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छाय करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाओ निकट ना तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई संबत सतरह सहस पनिजै अर्ध सहस फुन तीन कहिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो

तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो।

सब तू है जिन जगत उपाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा किन्नी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए, एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चुका, सत गुरु भला पाया। कह नानक जिसनो आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया।

सहज न उपजाय विन सहजाय सहसा न जाय नह जाए सहसा किताय संजम रहे कर्म कमाए सहसा जियो मलीन है कित संजम तोता जाए।

देखा हो विन सत गुर मुक्त ना पाए। आवहो सिख सत गुरु के प्यारे हो, गावहो सच्ची बाणी बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग, जपे हो सारिग पाणी। कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी।

चित्त जड़ाओ। सेव सकत आप उपाय कै करता पे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए।

आए। एहो हर रस करमी पाइय सतगुर मिलै जिस आए। कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए।

गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलया दिब दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो, साचै सुनना नो पठाए, साचै सुनना नो पठाए, शरीर लाए सुनहो सत बाणी। जित सुने मन

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तुद आगे अरदास हमार।

तू चाओ सज्जन मैडिया देई सिस उतार नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार जे तू मित्र असाडड़ा

नाभ चक्र ते सुन सकते हो, हिरदा चक्र जिथे दिल की धड़कन, कंठ चक्र जिथे गले चो आवाज आती है, इन्हां चक्रां ते आप नाम सुन सकते हो। किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं ले जाना जीओ, जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्होंने शब्दों विच भी ध्यान रखना जीओ, जिन्हां गुरमुखां नूं नाम सुन विच औकड़ हुंदी आ, श्वास अंदर नूं जांदा है, वाहे साइलेंट फील करना, श्वास बाहर नूं आउंदा गुरु फील करना, इस तरह सास ग्रास आपां ने सिमरन करना जीओ। जिन्हां गुरमुखां नूं नाम नहीं सुनदा, जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन पावे। आपां ने बहिंदे उठदे कम कार करदे समय भी इस तरह आपां ने सास ग्रास सिमरन जो नाम ध्याउणा, साइलेंट कम कार ते ड्राइव करदे समय किसी भी जगह ते आपां ज्यादा तो ज्यादा इस तरह दा लेना, श्वासां दे नाल आपां ने सिमरन दी माला बना लेनी है जीओ। एक दो मिनट वास्ते आपां ने साइलेंट होके सिमरन करना, उस तो उपरंत आपां फिर जपांगे जीओ। रसना दे नाल कृपा करके सब ने नेत्र बंद रखने हैं जीओ।

सच्चे त्रिखण सच्चे ब्रह्मण सच्चे त्रिलोच्य काल सच्चे त्रिकरण सर्विचार सच्चा तेरा मृषा दिवान सच्चा तेरा कुंचा ब्रह्मा सच्चा तेरा कुंचा निशान सच्चे दूधा खिला करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोड़।

का निसर पुछिए भय बकरे विचार अंतिर्यत ज्ञान बहोने पाए परमदार ज्ञानी ने तेवा देवा रूप दे सिंगार उचे कुकेवा दगावे जो दका विचार मूर्ख पंडित हिकमत

अगणत अतुल जियो बुलाभ त्यो नानक दास बोले जियो बुलाभ हो त्यो नानक दास भूले। सतनाम श्री वाहि गुरु जी। श्लोक मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जेहे जान्यो प्रभु आपुना नानक ते भगवंत। मत पूरी प्रधान ते

तो द्वैते एक रूप है गयो, दो रूप सी हुण एक ही हो गया। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। यह मिलाप दीआं निशानियां ने, अनुभव ने मिलाप दे। सतगुरु कहिंदे जिन्हें बंदगी कीती ना वाहिगुरु नाल जाण पहचान बन गई, सहजे सहजे वह वाहिगुरु ही हो गया, रब दा रूप ही हो गया, फर्क नहीं कोई रह गया। पौड़ी मम्मा जाहू मरम पछाना, बस यही तो भेद दीआं गल्लां ने। संसार वाहिगुरु नूं लभदा जे किसी दे अंदर इच्छा जाग भी पवे। गुरमुखो लभी दा उनूं है, ढूंढी दा उनूं है, सर्च उनूं करी दे जो गुआचिया होवे। समझण दी फिर कोशिश करो। पाली दा उनूं हुंदा है जो खोया होया गुआचिया होया। जिनूं केवल असी भुले हां उनूं भालण दी लोड़ नहीं, याद करन दी लोड़ हुंदी है। वस्तु रख दित्ती किते पर रख के भुल गए, भालण नालों ज्यादा सिमरती ते लोड़ पाओ भी रखी किते सी, सौखियां मिल जांदी है। पर एक कहीं भी मनुख की फितरत ऐसी बन गई है, जदों ये दुनिया विच आया ना, जन्म लिया जानी के इनू जो भी मिलिया बाहरों ही मिलिया। पहला सवास इस दुनिया विच लिया ऑक्सीजन मिली ते बाहरों मिली। तन दे उत्ते कपड़ा पहना दिता बाहरों मिलिया, भोजन मिलिया भावें मां का दुध ही सी पर बाहरों मिलिया। कीड़ी चीज सी जड़ी बाहरों ना मिली होवे, सब कुछ सुख सहूलत पदार्थ सब बाहरों मिलिया। जे थोड़ा जा अगली गल भी करिए, किसी नूं प्रभता वड्याई मिली, कोई अहुदा भी मिलिया ते बाहरों मिलिया, कुछ भी अंदरों नहीं मिलिया। ऐसे तरह एक मन विच ख्याल परपक हो गया भी जो भी मिलता बाहरों मिलता है। इस ख्याल ने मनुख नूं प्रेरित किया भी रब भी शायद बाहरों मिलता है। इसे करके कोई जंगलों वल तुर पिया, कोई होर कारजां वल तुर पिया, कोई यात्रा ते तुर पिया, तीर्थां ते नहाउण तुर पिया, भुलेखा पै गया बाहरों मिलदा है। सतगुरु अंतरमुखी बिरती करके समझाउंदे ने, कहिंदे तीर्थ जाण दी भी लोड़ नहीं, बाहर पैणी अंदर तीर्थ नाल, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। तीर्थ नहावण जाओ तीर्थ नाम है। किहो जिहा तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। विचार कर लिया कर शब्द ही, अंदरों मिल जाना है सब कुछ। इत्थे सतगुरु कह रहे ने, कहिंदे जिन्हां नूं इह भेद समझ आ गया, भेद दी गल समझ आ गई, उन्होंने फिर की कीता जां की प्राप्ति हुई। कहिंदे भेट त साध संग पति अन्ना। साध संगत दे विच आ के गुरु नूं भेट होए, गुरु नूं मिले, भेटा कीती, मुलाकात कीती, फिर विश्वास दृढ़ हो गया। पतियाना पतीजना भरोसा बनना, यकीन बनना, भाव ज्यों ज्यों संगत वल आए गुरु वल आए त्यों त्यों भरोसा भी वधदा गया। दुख सुख उआकै समत विचारा, सस्सा मम्मा तत्ता समत। कई बारी तत्ते नूं औंकड़ भी आउंदा इस शब्द नूं। यह दो रूप ने। शाम नूं पाठ बोध समागम चलदे ने, उहदे विच इह बरीकियां दसियां भी जांदियां ने। इत्थे भी बेनती करदे आं, एक रूप है सस्से नूं औंकड़ ते तत्ते नूं सिहारी। जदों इह पाठ होवे ना, मम्मा विचाले आ गया, सस्से औंकड़ मम्मा तत्ते सिहारी। इत्थे पाठ होणा सुमत, मूल शब्द मत है। इहदे फिर अगले दो रूप ने, एक कुमत है खोटी मत, एक सुमत है सियाणी श्रेष्ठ मत। उत्थे पाठ सुमत ही होना, ते जदों तत्ता मुक्ता आ गया औंकड़ भावे नाल आ जावे, फिर यह सुमत पाठ नहीं, यह समत पाठ हुंदा है। सम हुंदा बराबर, जिवें सतगुर पुरख दयाल है जिसनों समत सब कोए। सतगुरु दयालु पुरख है जिन्हों जिदियां नजरां विच सारे बराबर ने, उच्चा नीवा नहीं कोई है। इत्थे भी उही आख्या, दुख सुख उआकै समत विचारा। जिहड़े गुरमुख जन सतसंगी

दुख रोग संताप उत्तरे, संत साजन भए सरसे, सुनते पुनीत कहते पवित, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, सुनते पुनीत कहते पवित, बिनवंत नानक गुर चरण लागे।

प्रिय अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवे सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहांद जिस पास बैठे आ सोही।

जैसे अनिबान रहत टूट देह बिखै, जैसे अनिबान रहत टूट देही के बिखै, चुंबक दिखाए तत्काल निकसत है, जैसे जोक तोंबरी लगायत रोगी तन, ऐंच लेत रुद्र वृथा श्रम खस्त है। जैसे अनिबान रहत टूट दे ही बिखै,

जिंदन करका की थी रात खसम सार है तिगम जात नानक नावे बासनात रागूजरी महला चौथा हर के जाना सतगुर सतपुखा बिनो करो गुर पास हम किरे किरम सतगुर सन्नाय कर दया नाम प्रकाश मेरे मीत गुरदेवा मोको राम नाम प्रकाश गुरमत नाम मेरा पान सकाई हर की तंबरी रह रास रहा हजन के बल पाग वडेरे जिन हर हर सदा हर प्यास हर नाम मिले ततासा है मेर संगत गुण प्रकाश जिन हार हार हरस नाम न पाया ते पागहीन जम पास जो सतगुर सन संगत नहीं आए ते जीवे ते जीवास जिन हार जन सतगुर संगत पाई तिन तरन मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत्संगत जित रस पाया मिल जन नानक ना प्रकाश राग गूजरी महला पंजवा काहे रेमन चित्तव है उदम जां आहार हर जियो परया सैल पत्र मैं जंतु पाए तागा रिज को आगे कर धरिया मेरे माधो जी सत्संग मिले सो तरिया गुरप्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहा जन्म पिता लो सुदबंता कोई ना किसकी धरिया सिस रिजस बाई ठाकुर कहे मन पो करया उड़े उड़िया वैसे कोसा तिस पाछे बछरे चरिया तिन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिद्धान ठाकुर करता धरिया जन नानक बलबल सद बल जाइया तेरा अंत न पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरखा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुख निरंजन हर पुख निरंजना हर अगमा अगमा पारा सब त्याव है सब त्याव है तुझी हर सच्चे सिजन हारा सब जीओ तुम्हारे जी तू जिया का तारा हर त्याओ संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर निरंतर जी हर एक पुख समाणा एक दाते एक पिकारी जी सब तेरे चोज विडाना
ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਅੰਤਤ ਬਿਨ ਅਵ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਆਰਤੀ ਆਵੈ ਹੈ ਆਰਤੀ ਆਵੈ ਹੈ ਤੁਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਗਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭੈ ਜਿਨ ਹਰ ਤਿਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਤੁਟੀ ਚਮਕੀ ਪਾਸੀ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤਿਆ ਜੀ, ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਸ ਵਾਸੀ, ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਤਿਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਪ ਹੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਬੜੈ ਪੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ

भयो जिसका सबसे आधार जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदार यही बस्ता तजी न जाई नितन तक उतार तम संसार चन लग तरिया